0: Yenu.
1: Kanung Rose, my making.
2: Mosia Chamamu, Chamosia Lumamu, Lumosia Mine Mamu,
0: Yangi, Rintim Dingi, Jotanalabi Lagiri, Yangila, Lolono, Payaski,
3: Karikram, Adivasi, Sansar.
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्टा लाफा को केरसे की होसनी है।

तक तक तक तक तक तक तक रे हो यतिका दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाइ हिँड हो रा

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले बरी, लौंडे आगे कहे टिकट नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं चल निकले कहीं आ।

काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ फिर जलने लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती रहम पे, मर के दिखा रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 1 बज्यो। टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: 103 थोपलो 8 अंतर्मन को आवाज
1: स्टूडियो साइड अहिले राति को 8 बज्यो टाइम चेक को साथ मा मन के

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टेशन 1 स्टुडियो टाइमचेक
2: अहिले रातिको 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो लाइट अहिले बिहानको 5 बज्यो टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल